करना काले, मार नहीं करना, मोह नहीं करना, लोभ नहीं करना, विकार नू नेड़े नहीं लगन देना, और कुछ भी चित च नहीं आउन देना। नाम रतन गुना हर वणजे, लाद वखर लै चालियो, जो मालक ने झोली च पाया है वो सब तो कीमती, नाम दा दान लैके प्रसन्न ने। लाद वखर लै चालियो, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, सारा जीवन गुरु के प्यार विच प्रभु दे प्यार च निभा दिता। सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेवो अपना, चलते राखियो चीत, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो गृह पीतर, हिरदे कारज सहज ते आनंद टिकिया रे। जिथे भी हुक्म होया भज के उथे पहुंच गए, उठ वहां हूं को दर, आज्ञा मैं भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने हो, जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे लै मन। बड़ा आनंद होवेगा इस गल, जे नहीं एक वक्त अन्न भी नहीं रहा तां घर दे बर्तन वेच के, बस्तर वेच के, घुमणिया दा प्रसाद भी चलदा रहा तां भी परवाह नहीं, खेड़ा बनिया रहे, पूजा सारी उधर चली जावे परवाह नहीं, सेवा सारी इधर आ जावे ऐसे च आनंद है। सेवा इधर आनी चाहिदी है, पूजा जिहदी मर्जी लै जा, धन जिहदी मर्जी लै जा, ते सेवा विच रते होए। बुल्ले शाह गया सी ना दर्शन कर, गया है वेखिया माया दी रेल पेल ता कोई नहीं, पर एक गल बड़ी वधिया है, सरोवर दे पौड़ां च ईटां लग रही है, लंगर चल रहा है, ते जिसले मत्था टेकन गया महाराज दी हजूरी च, उथे कीर्तन भी हो रहे, ओ कीर्तन दियां मस्तियां वेखियां जिहड़ियां अज तक कायम ने, उस वेले दियां मस्तियां अज तक कायम ने। ठाकुर रविंद्रनाथ युग दे महान फिलासफर गए, कहन लगे एवें लोकी कहंदे ने, अगर फरदोस बर्ज मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, कश्मीर नूं कहंदे ने, कहंदे गलत कहंदे ने, स्वर्ग किसे ने वेखना ते आ पिया है, धन गुरु अर्जन साहब दा कायम कीता स्वर्ग ता इत्थे है। हरिदास कहंदे ने, कहंदे ने, हरि मंदिर बैकुंठ को तोल्यो हरी हरिदास, हरिदास कहंदे ने रब ने एक बार ऐसा कीता, तकड़ी दे दो छाबियां च पा के एक पासे बैकुंठ रख दिता, एक पासे हरमंदर रख दिता। कहंदे ने गौरा सो धरती रहो, हौरा चढ़ियो आकाश, इन्हां दोवां जिहड़ा भारा सी उह धरती ते रह गया हरमंदर साहब, ते बैकुंठ क्योंकि बहुत हौला सी उह आकाशा च रह गया, उह छाबा उपर उठ गया। बुल्ले शाह ने उस हरिमंदर च बैठ के स्वाद लिया, रस लिया, आनंद लिया, जिसले निकलिया ना बाहर झूमदा झूमदा, कहंदा है इट खड़के दुक्कड़ वजे, नाले तपे चुल्हा, नाले मेरा सतगुर राजी, ते नाले राजी भुला, स्वाद आ गया कहंदा इथे आ, नाले तां कहंदा ढोलका छैने खड़कदे ने, संगीत पिया चलदा है, नाले उसारियां लगियां होईयां ने, पा उसारी बहुत वड्डी गल, कुछ बन रहा है, कुछ उसर रहा है, कंस्ट्रक्टिव गल चल रही है। कहंदा इधरले पासे कुछ उसर रहा है, कुछ गाया जा रहा है, आत्मक उसारी भी हो रही, नाले कहंदा शरीरक उसारी की गल भी है, लंगर भी चलता पे, चुल्हे भी तपदे पे ने, कहंदे ने इहदे च होर की लैणा है, ये तिने काम चलते रहन, तिने पक्ष की उसारी हुंदी रहे, आत्मक उसारी, शरीरक उसारी, संसारक उसारी, धन गुरु अर्जन साहब तेरे दर ते तिने उसारियां चलदियां, ओ तिना उसारियां नूं करदे होए, क्योंकि जेड़ा बंदा झोरिया च पै जावे उसारदा नहीं, फिर उठा हुंदा है, ते शुकर च पै धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह सानूं शुकर दा सबक देंदे ने, आपां पढ़दे आं ने, हर का नाम हृदय नित ध्याई, कुछ लोग ऐसे भी हुंदे जिहड़े कहिंदे ने इह वी मालक दी रज़ा विच, जिहड़ा गुरुद्वारे नहीं आया जांदा, अमृत वेले नहीं उठांदा, ऐसी गल नहीं, रीझ तां कर तूं, अरदास तां कर, धन गुरु अर्जन साहब अरदास करदे, अरदास साडी झोली पाउंदे ने, हर का नाम हृदय नित ध्याई, प्रभु दा नाम नित हिरदे च ध्याउंदा रहां, क्योंकि इहदी बरकत इह पवेगी कि संगी साथी सगल तराई, गुरु मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिसदा समाले, फिर ओ अवस्था भी आ जावेगी, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, मैं ता मंगदा तेरे कोलो नाम, ए मंगनो मैं तेरी हजारी उड़ीकनी, भी तू नाम कदों देवेगा, ए ता मेरी मंग है, चोली मैं फैलावांगा, पा देवे तेरी रजा, दुख पा देवे, सुख पा देवे संसारी पद्धर दा, पर नाम विच जो सुख मैं लेना है ओ मैं मंगांगा जी, ओ मंगिया जा रहा।

और भुखा विच दुखा विच तोटिया विच घाटिया विच संसारी पद्धर तो वेखे जाते घाटिया विच ओ अवस्था टिकी हुई के मालिक जो तू करे सोई प्रवान साचे साहिब तेरा सच फुरमान मेनू सिर मथे सब कुछ प्रवान है जो पिता जी ने कहा सी जे सुख दे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे तिहाई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई ओ अवस्था लेके बैठे और सब किसान पै दें देने पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन तांकी ओट गही जाए जिन धारे ब्रह्मांड खंड जिन्हें सारा कुछ रचिया है ना हर तांक को नाम जपी जा रे मन की मत त्यागो हर जन तू ऐ ना सोच के मेरा हुक्म कौन मन तू गुरु के हुक्म मनन दी गल सुन हुक्म बूझ सुख पाई है रे जो प्रभ करे फिर तेन प्रभु का हुक्म मनना भी आ जाए जिस रजाज जिस हाल च रखे साई लोग जानदा सी ना ते पैरा थले आ गया केले का छिलका डिग पिया लोकी बड़े हसे मुस्कुरा वो भी उठ बैठा सट तो लगी हो किसे पुछिया कहना हसी जाना है साई लोग का डिगा है सट लगी हसी जाना है कह लगा अगे जिस वे एक बंदा डिगया सी उस वे तुसी भी सारे हसे सी मैं भी हसया उस हासे हासे विच मेरा भी पैर तिलक गया मैं डिग पिया तुसी ओदो भी हसे सी हुण भी हसे ओदो मैं भी हसया सी कहन लगे हुण तां तू डिगा हुण क्यों हसना है कहिंदा हुण इस करके हसना कि ओदो भी हासा नसीब डिगण तो पहला भी हासा नसीब होया ते तुहानूं सारयां नूं हसा दित्ता दो दो वारी होर की लैण मैनू सट लगी इस गल की परवाह नहीं तुहाडा जी तां खुश हो गया तुहाडा चित्ता राजी हो गया ना तुसी अगे भी हस रहे सी मैं भी हस रहा सा हुण मैं डिगा एक बारी तुसी होर हस लिया तुहाडे हासियां विच मेरी मौज है परवाह नहीं मैनूं कोई सट फेट भी लग गई हो मेनू कोई चोट भी लगी हो जेड़ा बंदा संसारियां वास्ते भी ये सोचे कि इन्हां नूं सुख किवें मिलदा है ओ रब नाल जुड़िया बंदा धन गुरु अर्जन साहब सानूं रब नाल जोड़ दे जो प्रभ करे सोई भल मानो मालिक जो करे सिर मत्थे प्रवान करके खुश हो प्रसन्न हो खेड़िया विच हासियां नूं ना पल्लियों छड सुख दुख ओही तिहाई है रे उस मालिक दी समर्था बड़ी है कोट पते तो उधारे खिणमय करते बार ना लागे रे हुण जरा देर नहीं लगती पापियां नूं तार उतारण विच दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावे तिसै नवाज रे पता नहीं किते ते रहमत हो जानी है किस ते केड़ी नवाजिश हो जानी है वैसे गुरु घर च सब तो वड्डी नवाजिश ए है कि नाम दी दात किदी झोली पैंदी पदार्थ किनू मिलदा है कोई बहुत वड्डी नवाजिश नहीं है नाम किनू मिलदा है ए सब तो वड्डी नवाजिश है जिस भावे तिसै नवाज रे सब को मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे देंदे तोट नाही तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे रतना दा भरिया हो सागर ओनू देंदिया फर्क कोई नहीं पैंदा ते लैण वाले दी झोली अड्डी होनी चाहीदी है मैं ओदे दर ते झोली अड्डदा ते सानू झोली अड्डन दी जाच बख्श करदे ने धन गुरु अर्जन साहब कहंदे ने जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे नानक दास तांकी शरणाई जानते वृथा ना कोई रे जिस दे दर तों कोई निराशा नहीं जा सकता मैं ओदे दर ते झोली अड्डी ए आओ असी भी झोली अड्डीए जे नाम झोली च पै जावे ना ते फिर दुख च सुख मनाउणा भी आ जांदा जे भुख दे तां इत ही राजा दुख विच सुख मनाई ओ जिहड़ी साहिब कलगीधर पातशाह ने किसे ने गल कही सी ना यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़िया दा रहना गुरु की मत तां इही है हिरदे च नाम होवे ना ते जिंदगी दे सारे दुख भी सुख जापदे ने ते रब तो बंदा टुटिया होवे ना ते सुख भी कलेश बन जांदे ने असी पृथ्वी चंद दे राह तो पैर हटा के धन गुरु अर्जन साहब दे मार्ग ते चलन वास्ते रजा च रहन वास्ते नाम दा पल्ला पकड़ना है ते साहिब ओ नाम झोली च पाउण वास्ते सानू जाच बख्शिश करदे ने कि आओ झोली अड्डो ते मंग लो

जुगत गुरु के पुत्र हो गए। ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने, जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया, गुरु पुत्रां च रल गया, प्यार दे रंग च रस्ता होया, प्रभु जस कर रहे है, प्रभु जस मान रहे है। और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया, आप बनाया। इस मार्ग ते जेड़े चलते ने, धर्म पंथ धरयो धरनी तर आप, जेड़े इस मार्ग ते चलते ने, रहे लिव तार न तावत है, भटकना मुक जांदी है, लिव जुड़ जांदी है, जीवन का आनंद लेंदे ने। भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने, कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग, मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना, और ये फल प्राप्त कर दे। ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा, रब के सुत को तिन त्रास कहां। जो चरण गुरु चित लावत है, जेड़े गुरु चरणां नाल मन जोड़ लैंदे ने, उन्हां नूं नरक दा डर नहीं, जम दा डर नहीं, ते ना ही किसे सुरग दी इच्छा रह जांदी। गुरु चरणां दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लैंदे ने, रंग च रते होए

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है वो मेरा, जो पिंड सब तिसका सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा, बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तो बिंदु जा और न कोई था तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना तो प्रभु जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई।

जन को तब अपने कतान जो तू करे करावे स्वामी हा मसलत परवान चरण शरण हम अनाथ ना फरकन अपनी कृपा करे चल कमल नानक आला दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत मरायण तन पाल गुण साखी चरण

आठ पहर हर जाए के मन इच पुजाई, मन इच पुजाई कर सेवा सेवक प्रण अपने जिन मन की

हे जग सच्चे की या कोठड़ी सच्चे का विचवास इकना हुक्म समाए लै इकना हुक्म करे विनाश इकना पहाने कट लै इकना माया विच निवास एव भे आख न जापी जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानी है जंतो आप करे अरदास कोड़ी नानक जीव पाए गए लिखना में तारन बहाले उथे सच्चे ही सच निपड़े चुनवा कड़े जजमाले था न पाए दूर मुह काले दोज चाले तेरे नाय रखे सुन गए हार

अनमल खाई सिरछाई पाई मूर्खन दे पत गवाई बिना ए कि खाए ना पाई रहे बेवाणी मणि मसाणी अंध न जाने।

तन जियो ते को जग में, तन जियो ते को जग में, मुक्ते हर चित्त में युद्ध विचार। देह अन

तो सभी पुत जो मुझे आ रहे ज्ञान की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञान की बढ़ने।

सत्संगत जी, सारी संगत, जिन्ने गुरसिख असी माई भाई हाजिर बैठे हैं, मैनू एक विश्वास होया है कि सतगुरु जिंदगी दी गल्लां, जिंदगी दे काम ते मनुख सारी जिंदगी करदा रहिंदा है, पर जिन्ने गुरसिख माई भाई तुसी हुण बैठे हो ना, अज एक ऐसा त्योहार है जो संसार विच सिख जगत का एक सब तो वड्डा ते महान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश उत्सव देख लो, असि किन्ने पिछे हैं, भावे कुछ भी है, लोगों कमां ते भी जरूर जाना होगा, फंक्शन केवल पौने 10 बजे तक सारा है, ता जिन्हां उत्ते गुरु साहब की बख्शिश हुई है उन्हां दी हाजरी लगी है। भाई दविंदर सिंह जी सिख जगत के बहुत वड्डे महान कीर्तनिया ने, गायक, और तुसी अजे उसनू नहीं सुनिया, अज मैं उन्हां नू थले थोड़ा जिहा ताड़िया सी कि चंगी तरह गाणा है, टाल के नहीं जाना, क्योंकि सिख जगत विच साडे देश विच संगीत की कीमत घटी है गुरुद्वारियां च, इस वास्ते छड्ड ही गए कि आल इंडिया संगीत कॉन्फ्रेंस विच कलकत्ते, जिथे नजाकत सलाम तोरी, बड़े गुलाम अली खान, सारे लोगों ने गाया, और इथे ए बंदा है सिखा विचो जिसने 2.5 घंटे करा गाया, 2.5 घंटे, और बड़ा वड्डा मान प्राप्त किया। रेडियो स्टेशन सारयां ते इन्हां दी बड़ी सत्कार इज्जत है, मेरे दिल विच इन्हां दा बहुत ज्यादा सत्कार है, एक बहुत वड्डे गुणी होने के नाते असि त्यारे सुन सुना के सीखे हुए हां, इन्हां लोकां दा कोई मुकाबला नहीं। मैं ते अपने आप नूं विद्यार्थी समझदा, ते गुरु साहब दा एवें आसरा लैके ही शुरू होईदा है, ते इह बहुत वड्डे गुणी हन, सानूं बहुत खुशी होई है कि उन्हां दा ऐसे इहो जिहे मौके ते इसे तरह के चंगे गुणी बंदे जरूर सदने चाहीदे ने। सो मैनूं बहुत खुशी होई है कि तुसी जिन्ने बैठे हुए हो सारे ओही हो कि जिन्हां नूं करीम किया जांदा है, कि सारी चीज का तत् निचोड़, सियाने सियाने मनुख बैठे हो, ते थोड़ा चिर आप सतगुरु महाराज की बख्शिश लो, ते गुरु ग्रंथ साहिब दी खुशियां हासिल करो।

सत्संग बड़ा ही मुश्किल रह गया, चोखा मुश्किल, ये गया नहीं जाता। ते इन्नी तैयारी नहीं की हुई क्योंकि पहली बारी शायद दूजी बारी गाने लगे, ते मालिक बड़ा बड़ा मुश्किल आ गया, एदा हुण जान बड़ा विकट ते टेढ़ा जिहा है। आप सुनो

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है। जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने, उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया ते मैल नाल पारा भी हो गया। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी काला होआ स्याओ ते फिर तरेगा किवें मैल नाल ते पारा हो गया।

जे तरना है भव जल तू ते मन भी सच्चा होवे ते जो तू मुख तू कमे ओ भी सच्ची होवे जो कुछ तेरे अंदर है ओ ही बाहर होवे ताके संसार नू ते तू खुश कर लेगा पर जद मन भी सच्चा होवेगा ते मुख विच भी सच बोलेगा ते फिर निरंकार भी सच्चा सच तेरी जेगा ओ सच दा उपाशक सच वंडन वाला सच दा प्रचार करन वाला नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने चढ़िया सोधन धरत लुकाई भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक कहन लगे मरदाने आ चल तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा लेकिन ओदे मन विच भाई मैं धर्म दा कम पिया करना मैं सच्चे नू रिझा लवांगा ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावां।

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़िया बहने गुरमुखा फिर असा चलते बनने। पर भोजन ता कर लो ना। आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे करते ने, यथाशक्त सेवा भी करदा। ए अज नहीं, ए रोज ही ऐसा चलदा। सतगुरु कहन लगे भाई फिर तो तेनू कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करदे हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करदे हो, कदे अपने वल वेंदा कदे बाबे वल वेंदा।

चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए हैं। बाबा जी खुश होए हैं तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कह लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने। पर जे तू चोरी ना करें ते चंगा, ए माड़ा काम है। कहन लगे बाबा एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, चोरी नहीं मैं छड़ सकदा। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली। असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा।

गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी जे तू नहीं मुड़ सकदा।

मन विच ख्याल आ गया भाई चलो राजे नू चल के लुटने आ, वो केड़ा गरीब है। शाही पोशाक पहन ली, घोड़े ते चढ़ बैठा ते रात राजे दे महलां नू तुर पिया। रस्ते च सिपाही ने रोकिया, भाई तू कौन है, इस वेले किथे जा रहे हैं? ते बाबे दा बचन चेते आ गया, फिर सच बोली, मैं पूछिया तू कौन है? कहंदा तेनू नहीं दिस रहा मैं कौन, मैनू नहीं दिस रहा तू कौन है? मैं चोर हां। हुण पहरेदार सोचण लगा भी चोर भी कदे कहंदा मैं चोर हां, ए राजे दा कोई खास निकटवर्ती होना, ते जे मैं रोक लिया तो सवेरे होर ना कोई बिपता खड़ी हो जाए। जा भाई नंघ जा, जा अंदर वड़िया, दीवे बुझा दिते, हीरे जवाहरात पुखराज नीलम सोना चांदी पांड बन लई। बंदे दा मन बड़ा लालची, होर बेंदा पर कुछ होर मिल जाए। हनेरा सी, हाथ मार दें मार दें, टोंदे हैं टोंदे हैं, किसे गिल्ली जी चीज नू लगा ते वो जबान नाल लाया ते उहदे विच लून सी। बाबे दा बचन चेते आ गया, पी लून खा के हराम नहीं करना। भाई साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही है,

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होण वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमा दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार कीती देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी ता सारिया देवतियां सलाह करके मंदरा चल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घुमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घुमदी देवते उस शेषनाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घुम रहे है बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तों पहलां जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुटदे ने ता नुकसान बड़ा हुंदा है ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ ला

लभते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े हुए घोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने कहा बच्चियो घोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छतरी हां इस तरह दे घोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नू भी दरख दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नू आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शित हो गए। ता उस वक्त सीता जी नू पता लगा। उन्हें आके क्या बच्चियो एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हन। उदू पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही ने जिहड़े साडे पिता ने। ता लिखिया उस वक्त अमृत दा कड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नू सुरत विच लियांदा। जेड़ा अमृत बचिया जगह पुट के उस नू दब दिता गया। त्रेते विच ए अमृत इस तरह प्राप्त कीता। ते लिखिया है कि जिस जगह ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगह प्रगट हुई। इस जगह धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगह नू अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद कीता जांदा है।

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दें, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी वो कहन लगे मेरा वीर डुबया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले

0: है अकाल पुरख। तू दरियाओ दाना बीना, तू एक दरिया है बड़ा वड़ा, मैं मछली कैसे अंत लहा, मैं एक मच्छी दी तरह वा, जिस तरह मच्छी दरिया दा अंत नहीं ले सकती कि दरिया कैडा वड़ा है, इसी तरह ऐ अकाल पुरख मैं भी तेरा अंत नहीं पा सकता। जदों ए शब्द उचारिया अकाल पुरख प्रसन्न होए, एक अमृत दा नाम दा प्याला उतरिया, हुक्म होया ऐ नानक ए मेरे नाम दा प्याला है, ऐ तू पी लै। ओ नाम दा प्याला तन गुरु नानक साहब ने पीता, फिर हुक्म होया ऐ नानक हर चीज दी कोई ना कोई कीमत है, तू मेरे नाम दा प्याला पीता है, दस तेनू इस नाम दा रस कैसा आया है और इस रस दी कीमत की हो सकती। ता उस वक्त धन गुरु नानक साहब ने ए शब्द उचारे,
1: कोटि कोटि मेरी आरजा पवन पियन अपिया,
0: कोट कहंदे ने करोड़, ऐ परमेश्वर करोड़ा करोड़ा साल मेरी उम्र होवे, पवन कहंदे ने हवा नू, करोड़ा करोड़ा साल हवाई खावा ते हवाई पीवा,

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा सुपने।

सोतकंदे ने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंत प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे एक नवा पंथ चलाने वास्ते। ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं

अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती। गुरु साहिबां दी अखां बंद ने, अखां दे सामने एक सूरत आई, लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां, चौड़ी छाती, मत्था चमकदा, अखां विच नाम दी लाली, बोल फरकदे नहीं, सोहना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा। सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने, तू कित्थों आई है? उस सूरत बोली, मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां, मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो। जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे, ए सूरत बड़ी सोहनी है, पर किन्नू दिया? मसंदा नू, पंडतां नू, साधुआं सन्यासियां नू किन्नू दिया ए सूरत? क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके लजाने आ, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनूं प्यार नाल साडे कोल लै। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जोड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह, मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकदा। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकदा? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परा हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता। ते कलगीधर पातशाह सिर दे प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आए, तीन दिन हो गए ने, तैनू रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना, पर साडे वास्ते बेटा की लेके आए। साध संगत, गुरु किसे चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिहदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों ओह काबल गया सी। दूसरा कंगन जिहदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओह कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਐ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਗਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

अपने हथां दे नाल साडे मुंह विच अमृत पाया। हुण पंजां दे अगे हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप खड़े हो गए कि सिखो हुण तुसी गुरु हो, हुण मैनू अमृत दियो। इस दुनिया विच एक नवी गल सी कि गुरु चेला बन गया ते चेले गुरु बन गए। दया सिंह कहन लगे, पातशाह असां सिर दे के अमृत लिए, तुसी अमृत मंगदे हो, तुसी की भेटा दियोगे? ता गुरु साहब ने कहा, मैं अपना पिता हिंदू धर्म दी राखी वास्ते पहला दे चुका, मेरा परिवार है, मेरा अपना आप सब कुछ भेटा कर दियांगा, पर मैनू अमृत छकाओ। पंजा प्यारियां ने गुरु साहबां नू अमृत छकाया ते हुण गुरु साहबां दा नाम भी बदली हो गया, गोबिंद राय तू गोबिंद सिंह। ते दूर सारियों एक साध उठी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तन है गुरु जिहड़ा आपे ही गुरु बनिया ते आपे ही चेला बनिया, एक नवा राह दुनिया नू दिता। ए जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा गुरु रह सकदा ते चेला हमेशा चेला, कहन लगे नहीं। जदों खालसा साजे फिर ये कहा कि हुण तुहाडे विच ते मेरे विच

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी। इस लई कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार दी सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े मान विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावे मैं अग विच भावे मैं देग विच भावे तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला है, गुरु वाला है, जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा, नहीं नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो, गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते। फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह दी हजूरी विच जिवें उन्होंने माण कीता, आपां भी माण करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और वधे कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा दा पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार अवगुण को न चितार गल सती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल।

अंदर बसते हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ते जड़े वैरी सन ऐ पातशाह हूं ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं, ओ भी हुन मेरा बुरा

पर फिर सोचे मना ए जेड़े फुल तू सुचे समझ के लिया है ए ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा है ता पवरा उन्हों सुंग जांदा।

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा

0: You're listening to CCAP Radio.
1: साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहेबजादियां ने सूबा सरहद नूं कड़क के कहा असी मौत विचों ही जिंदगी लभदे हां।

पट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोतायो। मथुरा कहिंदा पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे, असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए, ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। उस गुरु नानक दे गुण जदो राजे जनक दा दरबार लग्या सी, और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री, ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इना जीयां ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इना ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इना ने मिट्टी विच रोल देते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता, और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासा नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

राजे जनक ने आखिया देवतियां ने महाराज ए नरक और इत्थे पए जीवां ने नाम नहीं सी जपिया ना।

अर्जुन देव महाराज दी गोद विच ही तेरा सिर है रिखी, साथ संगत बोलो श्री। उस वेले जिस वेले रिखी ने गुरु अर्जुन देव पातशाह दे दर्शन कीते, कहन लगा सचमुच गुरु अर्जुन देव ही हरि दा रूप है। तां फिर उस रिखी ने गुरु अर्जुन देव पातशाह दे चरणों विच विश्वास छड्ड दित्ते, ते फिर जूनिया तो मुक्त होके निरंकार दे देश चला गया। ताई आख्या जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जो भी गुरु अर्जुन देव पातशाह दा नाम प्यार नाल सिदक नाल परोसे नाल जपेगा, प्यारी साथ संगत ओ जूना तो रहत हो जावेगा। जूना दे फिर 84 लाख त्रिगड़ जूना विच ना आवेगा। ओ जो जपेगा तन गुरु अर्जुन देव पातशाह दा नाम, आओ प्यार नाल जपिए।